0: संगम न का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
1: नहीं कभी नहीं होगा

0: बबी जी मेरी आवाज अज तो भाई ड्रामा ही हो रहा कोई मैं ना एक गाना ला लेना ते जिनी देर इन्हों आवाज नहीं ना मेरी सेटिंग हो जाती उन्नी देर फिर
1: हेलो जी
0: बबी हेलो जी हे हे कितने हेलो बबी जी सुन रहे हो मैनू बबी जी ताड़ी आवाज जिहड़ी है ना ओ मुकेश पगरूंगा दोस्तों साडा ना कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा आपस विच ते मैं उन्नी देर गाना ला
2: और बेल आइकन को प्रेस करें
0: गाना ला बबी जी सुन रहे हो मैनू

लगाती ना, छोटी सी उम्र में वो जान तो लगाती ना, प्रेम का राग पुराना पुराना पुराना, मैं कहती यमला पगला दीवाना हो रब्बा।

0: बाल को
1: आजा पिया तोहे प्यार दूं, ओ गोरी मैया तो प्यार दूं, इसलिए तू

0: अज पिया तोहे प्यार दू ओ गोरी भैया तोहे प्यार दू।
1: वाह वाह राधना जी, अज मदर डेरी है तुहानू पता होना
0: जी।
1: दुनिया दी सोहनिया मावां जां अपनी मां बारे कुछ कहना चाहोगे?
0: जी बिल्कुल। एक बहुत पुरानी फिल्म ओदा नाम सी मंजली दीदी।
1: मंजली दीदी हांजी
0: हांजी। मंजली दा मतलब की विचकारली।
1: अच्छा।
0: यूपी च मंजली या मंजला भरा विचकारले नूं कहंदे।
1: मेहरबानी, मेरे वास्ते नवा लफज आए। थैंक यू।
0: मंजली दीदी।
1: अच्छा मंजली दीदी, ठीक
0: है। सचिन छोटा जिहा सीगा ते उहदे उत्ते गाना फिल्माया सीगा जो मैं हुण आप जी नूं सुणाउण लगी मावां उत्ते।
1: अच्छा सुणाओ जी।
0: ते ए गीत वैसे तो सारे मावां ले इको गीत गांदे ने, बड़ा हिट है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी
1: काफी।
0: ए भी गीत आ, ए भी बड़ा हिट होया सी।
1: अच्छा।
0: ते जेड़ा मैं आप जी नूं सुणाउण लगी ओ किते किते आकाशवाणी ते बजदा सी।
1: अच्छा।
0: और क्योंकि मेरा शौक रहा ते मैनू तो फिर बचपन दे सारे गीत
1: याद ने जी। मैं बिल्कुल
0: जी। ए भी बड़ा गॉड गिफ्ट है जी, इन्ने गीत याद रखने। मैं कल दो ढाई सौ गीत मेनु मुंह जवानी बचपन दी याद ने हुण तक।
1: टेस्ट है, हॉबी है तुहाडी।
0: जी हां जी बिल्कुल। ते दूसरी गल है कि मेरी मां दी देन है। ते मेरी मां ने कहा गुड्डी तेन ए गीत याद है, तू ए गीत
1: सुना। तुहाडा गुड्डी हुंदा सी?
0: हां जी हुंदा। नहीं सी हुण वी
1: यार। तुहानू गुड्डी
0: तुसी मैनू गुड्डी बुला सकदे
1: हो?
0: आजा हुण।
1: चलो जी मैं अगली बार तो गुड्डी तुहानू गुड्डी दे नां नाल मुखातिब करांगा। बहुत सोहना नां है गुड्डी। आम पिंडां विच हुंदा कुड़ियां दे नां
0: जी। ते मेरे नानी जी ते मेरे फादर मेनु गुड्डो कहंदे सी प्यार नाल।
1: गुड्डो गुड्डी। हां जी हां जी
0: हां जी। ओ गीत मैं आप जी ने बोला।
1: नानी नानी ते नाना तुहानू प्यार नाल गुड्डो कहंदे सी?
0: हां जी।
1: ते जदों गुस्से च हुंदे सी उदों की कहंदे हुंदे सी?
0: उदों कहंदे सी नी गुड्डो सुनन दई आ उरे आई। तैनू सुनंदा नी? एक बारी मैं नानी ने आवाज मारी, मेरे नाना जी हुक्का पींदे सी।
1: अच्छा।
0: ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਭਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
1: ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ?
0: ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਮਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਨਾਨੀ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਚ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਕੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਘੁੱਟ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਵੀ ਸੁੜਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਗੁੜ ਗੁੜ ਗੁੜ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
1: ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਹੁੱਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ
0: ਜੀ
1: ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
0: ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਨੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗੁੱਡੋ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਬੈਠੀ ਹਾਂ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਕਹਿੰਦੀ ਉਰਿਆ ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ, ਮੈਂ ਫਰਾਕ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
1: ਹਾਂ।
0: ਮੈਂ ਚੁੱਪ।
1: ਹਾਂ।
0: ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਟ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ।
1: ਅੱਛਾ।
0: ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਿਕਰ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ, ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਸੁਣਾਨੀ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ।
1: ਠੀਕ।
0: ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ

0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆ
1: ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ
0: ਬਿਲਕੁਲ
1: ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਪਊ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਮੀ
1: ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਥੋੜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੋ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੰਟਰੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰੋਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਅਗੇਂਸਟ
0: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ
1: ਹੱਕ ਆ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਥੋੜੋ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਜੂਗਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਟੇਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨੀ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤਖਾਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੋਰਨਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਨਸਕਿਲਡ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਆ ਅਨਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੇਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਧਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੇਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੋੜਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੋੜਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਕਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਨਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੇ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਉਹ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਸੋ ਇਹ
1: ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵਧੀਆ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਬਾਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਜਾਬਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਆ ਕੁਛ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਘਾਹ ਉਗਦਾ ਸੜ ਸੁੜ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਉਗ ਪੈਂਦਾ
0: ਬਸ ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੈਮ ਡੋਨਲਡਸਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਆਵਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹ ਆ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਜਾ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਪੀਟਰ ਜੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪੀਟਰ ਜੈਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬੋਰਨ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣੀ ਆ ਸੈਮ ਡੋਨਲਡਸਨ ਉਹ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫੂਡ ਸਟੈਂਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਵਾਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਸੀ ਵਿਹਲੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆ
1: ਇਹ ਵੱਡੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆ ਹੋਰ ਕੀ
0: ਇਹ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ 1,000,000 ਲੈਣਾ
1: ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਕਿਤੇ 100-200 ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਜਾ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਥੇ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਟਾਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ, ਵੰਡ ਵਟਾਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਉਹ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਲਾਨੇ ਦੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਰ ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਦੋਨੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮਰਡਰ ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹੋ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਆ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਆ ਇਹ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਆ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖਾਕਸਾ ਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕਰਾਨ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਛ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹਦਾ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੋਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗ ਨੀਲੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਆਊਗਾ
1: ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਕਚਰ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3-3 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
2: ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
3: ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ।
2: ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ,
1: ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ
2: ਕੱਲ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਹਿੰਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਕਾ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰੋਤਾਓਂ ਕੋ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ ਆਪਕਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੇਕਰ, ਔਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਮੇ ਆਪ ਸਮਝਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਸੇ ਜੀਵਨ ਕੀ ਉਤਪਤੀ ਕੈਸੇ ਹੋਈ, ਕੈਸੇ ਯੇ ਚਲਾ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਰਸਤੇ ਮੇ ਰੁਕਾਵਟੇ ਆਈ, ਇਨ ਸਬ ਕਾ ਬਿਊਰਾ ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ। स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई, कहां कहां क्या रुकावट आई, इस चीज को हम तीन लैंग्वेज में आपके सामने पेश कर रहे हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में और पंजाबी में। तो और इस प्रोग्रामों में हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेडियो प्रभास न्यू जर्सी से और रूटीन में सबरंग रेडियो स्टेशन, यूट्यूब, फेसबुक मीडिया, ये सब हमारे साथ होते हैं हमेशा ही। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनता इन प्रोग्रामों को सुने और अपने शरीर के बारे में, अपने जीवन के बारे में जान पाएं, क्योंकि इस जीवन से हम लोगों ने बहुत बहुत काम किए हैं। जितनी भी डेवलपमेंट आप दुनिया में देख रहे हैं ना, ये सब इस शरीर की वजह से हुई है, शरीर ने की है। और हम, अफसोस की बात यह है कि इस शरीर के बारे में हम जानते ही नहीं है, जिससे हम सवारी करके ये संसार की इतनी बड़ी खोज करते हैं, इतने काम करते हैं, उस शरीर के बारे में हम जानते नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि हाँ, इसको इस तरीके से पेश किया जाए कि आपको लगे कि एक नावल सुन रहे हैं, एक कहानी सुन रहे हैं, आसानी से आपको समझ आ जाए और जो चीज मैं कहना चाहता हूँ उसको कन्वे कर पाऊं और आप समझ पाए आपके लेवल पे तक। क्योंकि आप सभी लोग तो मेडिकल कॉलेज में नहीं गए हैं, आपको तो बायोलॉजी की समझ नहीं है, आपको तो शरीर का ये जो बंतर का सिस्टम हम लोग शुरुआत में बताते हैं मेडिकल कॉलेजों में, वो आप नहीं जानते हैं। फिर भी मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके लेवल पे, जानकारी के उस लेवल पे आके आप सब लोगों को वो समझाऊं कि ये शरीर कैसे कैसे चल रहा है। तो इस चलती हुई लड़ी में हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि भाई शरीर में क्या क्या होता है, कितने अंग होते हैं, उनमें अगर कोई खराबी आ जाए तो बाहर हमें क्या क्या साइन दिखाई देंगे। क्योंकि बड़ी बात तो ये है ना, अंदर जाना शरीर के, या अंदर शरीर की क्या क्या कमी पेशी हो गई, क्या घटित हुआ, इसको जानने के लिए तो बहुत लंबी बात है ना। हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट कराएगा, उसका रिपोर्ट आएगा और फिर हमें पता चलेगा कि भाई अंदर क्या हुआ था। लेकिन मैंने आपको बहुत सी एग्जाम्पलें देकर, जैसे पानी में एक कंकर फेंकने से लेकर, या टेलीफोन का कनेक्शन जैसे हमारा इंडिया में जाता है, इमीडिएट उसी वक्त क्लिक होता है, ये सब कैसे होता है, सो वो सब चीजें की एग्जाम्पल देकर मैंने आप सब लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि भाई इस शरीर के अंदर अगर कुछ भी घटित होता है तो उसकी बाहर की निशानियां भी हैं। जैसे मैंने कहा कि कंकर तो आपने पानी के अंदर फेंका, लेकिन पानी एक किनारा होगा ना, वहां पर जाकर खत्म होगा ना, या इससे आगे पानी ये नहीं है। वो जो किनारा है वहां पर उस चीज को हम महसूस कर सकते हैं कि किसी ने कुछ ना कुछ इस पानी में हलचल की है। इसी तरह ही शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी सिस्टम में, कहीं भी अगर कोई खराबी हो जाती है तो उसका बाहरी शरीर पर भी इफेक्ट होता है। बाहरी शरीर से भी हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई अंदर क्या घटित हो रहा है, अंदर क्या नुक्स हो रहा है। तो उन चीजों की जो जानकारी देते हुए मैंने सिर के बारे में आप सब लोगों को बताया था, फिर हम नेक पे आ गए थे, गर्दन पे आ गए थे, और गर्दन क्योंकि जिस अंग की भी मैं बात करता हूं ना, उस अंग के सबसे पहले उसके अंदर है क्या, कौन कौन से अंग हैं, उस चीज को फॉर्म कौन कौन से बनाते हैं, तो उनकी जानकारी मैं आपको देता हूं। उसके बाद फिर उनका फंक्शन क्या है ये आपको बताता हूं। उसके बाद अगर उनमें नुक्स हो जाए, कोई कमी पेशी आ जाए, जिसको हम बीमारी बोलते हैं, तो उस लिहाज से आपको बाहर क्या पता चलेगा। तो इसलिए मैंने एक एग्जाम्पल, मेरे याद आ गया कि एक बेतार लिंक होता है ना, लेकिन हमारे शरीर का तो पूरे का पूरा लिंक अंदर से बाहर तक है, बेतार भी है। जैसे टेलीफोन हमारा जो है, यहाँ हम डायल नंबर करते हैं और इंडिया में चला जाता है। इसके साइंस ने बहुत से तजर्बे किए, साइंस ने तजर्बे ऐसे किए कि रैबिट्स होता है ना, रैबिट्स के बच्चों को लेकर सब मेराइन में समुन्दर के नीचे बहुत दूर दूर तक, मिलो मिल दूर ले गए। इधर जो उसकी मां थी उनके बच्चों को, उनको वो जो एनोड और कैथोड जो भी कुछ वो बोलते हैं हिंदी में, उसका ब्रेन में उसको लगा दिया, जिससे हम जैसे आजकल ईकेजी करते हैं, एनसेफलोग्राम वगैरह करते हैं ब्रेन की रीडिंग करने के लिए, वो लगा दिया। तो जैसे ही अंदर किसी एक बच्चे को काटा गया और उसी वक्त उसकी मां का जो वो रिएक्शन था ब्रेन का, चेंज हो गया। बार बार ऐसा किया, तजर्बा किया गया, उस लिंक तो था नहीं कोई, लेकिन ऐसा लिंक है जिसको हम नहीं जानते। ब्रह्मांड में ऐसा लिंक है जिसको हम नहीं जानते, लेकिन उसी की वजह से जैसे जैसे हमारी जानकारी बढ़ी, टेलीफोन लाइन ये सब, अब चांद के लोग गए हैं या चांद से ऊपर भी जाकर आ गए हैं, उनसे हमारा लिंक रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लिंक रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरे का पूरा एक कम्पैक्ट चीज है और इसमें एक किनारे में अगर कोई भी चीज ऐसी घटित होती है और मान लिया जाए वो किसी मंगल ग्रह में होगा या किसी ऐसे होगा, तो फिर वहां होते तो वहां भी हो सकता। तो इस तरह की ये घटना है। ये एग्जांपल मैंने आप सब लोगों को इसलिए दी कि शरीर के अंदर अगर कुछ भी घटित होता है जिसको हम बीमारी बोलते हैं या कहें कि नॉर्मल फंक्शन नहीं अंदर के अंगों का चल रहा, तो उसकी बाहर की निशानियां आ जाती हैं। सो पिछले प्रोग्राम में जो वो हिंदी का प्रोग्राम था उसमें मैंने आप सब लोगों को बताया था कि साधारण तौर पे इस छाती के अंदर फेफड़े हैं, इस छाती के अंदर हार्ट है, इस छाती के अंदर दोनों फेफड़ों के बीच में एक रास्ता है, कॉमन पाथवे है, जिसको हम मीडियास्टाइनम बोलते हैं, और उस मीडियास्टाइनम में ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर जाने वाले बहुत से वेसल्स हैं, बहुत सी चीजें हैं जो ऊपर से नीचे जाती हैं और नीचे से ऊपर जाती है, जिनका नाम मैंने बताया था आपको, जैसे कि कैरोटिड आर्टरी की बात मैंने बताई थी कि ये हार्ट से खून लेकर और सिर को पहुंचाती है, वहां से जो वापस आता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा। इसी तरह नीचे जो खून जाता है उसको हम थोरेसिक एओर्टा बोलते हैं, छाती के एरिया से निकल जाता है तो उसका नाम हम बदल देते हैं, एब्डोमिनल एओर्टा क्या बोल देते हैं, लेकिन ऐसे ही ये सारा खून पांव के अंगूठे से लेकर ऊपर आ रहा है तो उसका नाम हमने अलग अलग जगह कर दिया, और एब्डोमेन में जब आती है तो उसका असेंडिंग एब्डोमिनल नाम साथ में जोड़ दिया और उसको हमने ये कह दिया वीना कैवा, एओर्टा नहीं कहा। एओर्टा वो है, इसका नाम आर्टरी है जो खून लेकर जा रही है, और जो वापस लेकर आ रही है उसको वीना कैवा कह दिया। इसी तरह ऊपर का खून लेकर वापस आ रही है हार्ट की तरफ और उसको सुपीरियर वीना कहा, इसको हमने कहा इन्फीरियर वीना कैवा। इसी तरह हमारी खुराक की नाली है, खुराक की नाली की तब्दील मैंने आप सब लोगों को बता दी कि मुंह से चलेगी नीचे टट्टी के रास्ते तक, उसका लिंक है, लेकिन हम छाती की बात कर रहे हैं तो ये छाती से गुजर कर जब निकलती है तो वही पाथवे जिसको हम मीडियास्टाइनम बोलते हैं ये उसी से होकर निकलती है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी किसी भी वक्त कोई खराबी हुई, किसी एरिया में भी खराबी हुई, तो उसका जो लिंक है वो छाती से तो है ही है, और वो हम इसके सिम्टम इसकी निशानियां हमें देखने को मिल जाएंगी कि भाई यहां पर ऐसा कोई खराबी है। इसी तरह ही सांस की नाली की बात मैंने की थी कि सांस की नाली नाक से शुरू होती है, नीचे आती है, गर्दन से निकलती है, फिर नीचे आती है, फिर छाती में आती है, उसको हम ब्रोंकस बोल देते हैं, राइट ब्रोंकस लेफ्ट ब्रोंकस दोनों फेफड़ों में जा रही हैं। तो इनमें से अगर कोई खराबी हो जाएगी तो ये मीडियास्टाइनम के एरिया से बाहर निकलने से पहले जितना जितना भी उसकी कोई खराबी हो जाएगी उसको हम कैसे जानेंगे, या फेफड़ों में चली जाएगी तो उसके बाद हम कैसे जानेंगे, वो फेफड़ों निशाने में आ जाएगा कि हमारे फेफड़े का काम क्या है, सांस लेना अंदर लेना बाहर छोड़ना, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन इसको हम बोलते हैं, और इनमें से कहीं किसी में रुकावट आ जाएगी, हो सकता है दोनों में रुकावट आ जाए। तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जैसे आजमा है, जैसे ब्रोंकाइटिस है, जैसे प्लूर्सी है, बहुत सी चीजों का हम नाम लेंगे बाद में और आपको बताएंगे भी उसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, और ये ऐसा हो सकता है कि उनकी वजह से ये ब्रोंकस जो है वो यहां से गुजर रही है और उसकी निशानियां पैदा होंगी यहां पर, वो हम आप सब लोगों को बताएंगे। तो फिर हमने ये कहा कि कुछ ऐसी निशानियां हैं जो जनरल तौर पे हैं, हम ये अब नहीं जानते कि ये हार्ट में होगी, ये फेफड़ों में होगी, ये ब्रोंकस में होगी, ये इसोफेगस में होगी, लेकिन हाँ कुछ ऐसी निशानियां हैं जो हम जनरल तौर पे छाती में आप देख सकते हैं, और उसको हमने कहा था पेन और लाइट हेडेडनेस, प्रेशर होता है, टाइटनेस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सडन अगर मान लीजिए हार्ट की प्रॉब्लम, हालांकि ये सिम्टम हार्ट का है लेकिन मैं जनरल की बात कर रहा हूं, तो जनरल में है कि अगर किसी जगह चलता चलता कोई चीज रुक जाए, रोड पे ट्रैफिक ही रुक जाए तो क्या होगा, वहां पर कंजेशन हो जाएगा ना, काफी सारी बसें कारें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी ना। तो इसी तरह अगर शरीर का चलता चलता कोई फंक्शन कहीं रुक गया, मान लीजिए हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट का काम क्या है, उसका मेजर मेन काम है कि खून को पूरे शरीर को पहुंचाना। खून की जब हम बात करते हैं तो उसका मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन भी है, इसमें खुराक भी है, इसमें शरीर की प्रोटेक्टिव पावर भी है। प्रोटेक्ट करने वाला जितना भी सिस्टम है, जैसे हमारी सीआरपीएफ, पुलिस है, बेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस तरह इस ब्लड के अंदर वो फोर्सेस जो है डिफरेंट वो भी शामिल है। अब वो भी जगह जगह जा रही है, हर एक सेल तक पहुंचती हैं, और ये मेन काम है हार्ट का। और मान लिया जाए ये सारा काम रुक गया कहां, हार्ट ने तो पुश कर दिया, हार्ट ने पुश कर दिया लेकिन वापसी नहीं आ रहा, कहीं रुकावट हो गई है, तो उसका मतलब है कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, कहीं कोई रुकावट होगी होगी, तो इसका मतलब है अगर इस तरह की निशानियां आ जाती हैं तो फिर हमें क्या दिखाई देगा बाहर, स्वेलिंग, चेहरे पे स्वेलिंग आ सकती है, पांव में स्वेलिंग आ सकती है, टांग में स्वेलिंग आ सकती है। और इस स्वेलिंग का भी हमने आपको स्पेशली बताया था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। स्वेलिंग बहुत तरह की, पानी भर गया है जी, एलिफेंटियसिस हम उसको बोलते हैं, इस तरह की बीमारी जो मच्छर काटने के बाद हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, इस तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे स्वेलिंग हो सकती है। प्रोटीनेमिया होता है, प्रोटीन की कमी आ जाती है, उससे भी स्वेलिंग होती है। पानी भर गया है, उससे भी स्वेलिंग होती है। और इसी तरह खून रुक गया है, जैसे बहुत से लोगों को आपने नीली नीली नाड़ियां देखा होगा कि नीचे टांगों में बहुत सी उभर कर आ जाती है, हालांकि सभी की नाड़ियां जो है शरीर में नीली नीली नाड़ियां आपको दिखाई देती है, ये सब नीली नीली नाड़ियां वो हैं जो खून हार्ट को वापस लेकर जा रही है, हर एक सेल से इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करते करते ये वापस लेकर जा रही हैं, और ये सुपरफिशियल होती है। सुपरफिशियल का मतलब होता है कि चमड़ी के नीचे होती है, चमड़ी के नीचे, लेकिन वो नाली जिससे हार्ट पूरे शरीर को खून भेज रहा है उसको हम आर्टरी बोलते हैं, और वो एक तरह की जीटी रोड है जिसमें कोई ब्लॉकेज नहीं है, इसमें कोई लाइट नहीं है, इसमें ट्रैफिक रुकेगी नहीं, और वो डीप है। जैसे आपने देखा ना, आपको लड़ाई लगी ईरान में या ऐसे कुछ हो गया ना, बहुत से देशों से गैस या पेट्रोल जो भी कुछ आता है उसको लाने के लिए अंडरग्राउंड पाइप्स इवन समुद्र से भी आ रही हैं, अंडरग्राउंड पाइप बनी हुई हैं जो दूसरे देशों को वो सप्लाई करती हैं। उसका कोड ऑफ कंडक्ट डिफरेंट है कि चाहे लड़ाई लग जाए चाहे कुछ हो जाए, भाई हमें इनको नहीं छेड़ना है, हमें इनको टच नहीं करना है, ठीक है। सो इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं और इस तरह वो सब चीजें आ रही हैं, लेकिन अगर उसमें कोई रुकावट आ गई, उसमें अपनी भी तो रुकावट आ सकती है ना, मान लिया कोई टेररिस्ट ग्रुप है उसने कुछ ऐसा कर दिया तो कर सकते हैं ना, वो तो कानून के अनुसार नहीं ना चल रहे, बिना कानून के चल रहे हैं। तो यही बात मैं शरीर के बारे में कह रहा हूं कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो शरीर के चलन, जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, शरीर के चलन के अनुसार ही नहीं होती, फिजियोलॉजी के मुताबिक नहीं होती। फिजियोलॉजी क्या है, एक नॉर्मल कर्म है, सांस का आना सांस का जाना, खून का आना खून का जाना, इसी तरह हर अंग का अपना अपना एक चलन है काम का, ऐसे ऐसे उसको काम करना है, लेकिन उस काम करने के ढंग में या रस्ते में अगर कोई रुकावट आ जाए तो फिर वो क्या शो करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम्स देगा। घर में आग लगी हो तो हम क्या करेंगे, जलाएंगे, रौला करेंगे कि भाई हमारे घर में आग लगी, हमारे घर में आग लगी। तो शरीर के अंदर भी अगर कुछ ऐसा घटित हो जाता है ना, तो फिर शरीर भी उसी तरह ही करता है, आपको बताता है कि मुझे ये हो रहा है, चला रहा है, ये अंदर ऐसे हो रहा है। ये हमारी बात है कि हम समझते हैं कि नहीं समझते। एक बार मैंने ये भी एग्जाम्पल दी थी कि बच्चा रोता है ना, तो माँ उसके रोने को, क्योंकि उसकी तो बोली यही है, अभी उसको और लफ्ज नहीं आते और बोली नहीं आती, सिर्फ रोना ही आता, उसको भूख लगेगी रोएगा, उसको पॉटी करनी है रोएगा, उसको पेशाब करना है रोएगा, उसको खुराक चाहिए दूध चाहिए तो रोएगा। बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए उसके पास एक ही चीज है, रोना। लेकिन रोने का भी अलग अलग ढंग है। बहुत से ये लोग शिकारी लोग भी होते हैं ना, जो तीतर है बटेर है, इनकी अलग अलग आवाजों से पहचान जाते हैं कि भाई ये कौन सा जानवर बोल रहा है। इसी तरह जो सयानी माँ होती है ना, सयानी माँ बच्चे के रोने से ये अंदाजा लगा लेती है कि इसको क्या चाहिए, ये क्यों रो रहा है, अब ये दूध के लिए रो रहा है या इसको पॉटी की, इसको सफाई करने की जरूरत है या कुछ भी इस तरह। और जो बेचारी मैं नहीं समझती उनके बच्चे पॉटी भी नीचे में करे जा रहे हैं, वही उसी तरह चलाई जा रहे हैं, कोई केयर नहीं कर रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो समझ ही नहीं रहे उसकी बोली में। यही बात इस शरीर के ऊपर भी लागू होती है, यही बात इसको समझने वाले डॉक्टर वैद्य हकीम जितने भी हैं उनके ऊपर भी लागू होती है कि अगर तो वो समझदार हैं तो फिर वो समझ जाएंगे कि शरीर के अंदर पैदा हो रहे ये जो निशानियां मैं बता रहा हूं, ये निशानियां क्या बता रही हैं, क्या कह रही है कि अंदर क्या हो रहा है। और अगर वो जानकार नहीं है तो फिर निशानियां जितनी मर्जी हुई हो उनको नहीं पता चलता कि क्या है कैसे। जैसे मोटी सी बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर मान लिया जाए, लोग बोलते हैं ना कि हार्ट अटैक, तो सडन हार्ट अटैक आ गया जी, सभी लोग ये बोलते हैं सडन कुछ नहीं होता शरीर में, शरीर के चलन में सडन कुछ नहीं होता, हर एक चीज जो है किसी ना किसी कारणवश होती है। और वो कारण को अगर हम जान लें, और कारण ऐसा नहीं है बादल आएंगे तो एकदम ही नहीं है बरसात होनी शुरू हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि ठंडी हवा चल रही है, काले बादल आ रहे हैं, अल्टीमेट पता ही है कि अब थोड़ी देर में बारिश हो जाएगी। इसी तरह शरीर के अंदर अगर कुछ भी घटित होता है तो वो सडन नहीं होता, उसके लिए सडन की बात यह कि चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, ये सडन की बात है। लेकिन इस सदन को भी शरीर कैसे देता है, शरीर का रिस्पॉन्स क्या है, वो उसके बाद उसके सिम्टम पैदा होंगे वो हमें जानना होगा। स्वेलिंग आएगी, ब्लीडिंग आएगी, फिर उसका जुड़ना कैसे है, उसकी रिजनरेशन कैसे कैसे होनी है, ये उसकी निशानियां हैं जो ये बताएंगी कि अंदर ये शरीर जीवित था, डेड बॉडी की हड्डी टूट जाएगी तो उसको क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा ना। जीवित को अगर कोई हड्डी टूट गई है तो उसके जो सिम्टम पैदा होंगे ये बताएंगे कि इसके अंदर जीवन शक्ति थी और उसका अपना एक चलन है, एक रूटीन है, और उस रूटीन को हम जानते हैं, पैथोलॉजिकली हम जानते हैं। और अगर उस रूटीन में अगर कोई खराबी होगी, रुकावट आएगी, तो फिर हम कैसे समझेंगे, उसकी निशानियां हैं, हम समझ पाएंगे कि भाई हाँ ये जो जख्म था, ये जो फ्रैक्चर हुआ था, उसके बाद ये नॉर्मल रिपेयर नहीं हो रहा और इसके पीछे ये कारण, ये निशानियां आ रही हैं। वही बात मैंने एक बार आप सब लोगों को ये भी बताया था कि अगर मान लिया जाए किसी को कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, बार बार है, उसकी खुराक से है, उसके चलन विहार से है, एक्सरसाइज नहीं करना है, खुराक उसकी इस टाइप की है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और उसके बाद क्या होगा कि ये जो आंखें ना, आंखों के नीचे या कहीं शरीर के अलग अलग भागों में पीले पीले से छोटे छोटे से स्पॉट्स बन जाएंगे, और जिनको स्क्यूज करें तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलेगा पीले रंग का, और इस तरह की डिपोजिशन अलग अलग जगह में हो जाएगी। पर हम चेहरे की बात कर रहे हैं कि सामने देखेंगे तो देखेंगे कि आंखों के नाक के साथ जहां आंख मिल रही है वहां पर छोटे छोटे इस तरह के पीले स्पॉट्स हमें दिखाई देंगे, अगर उसको स्क्यूज करेंगे तो उसे कुछ निकल भी सकता है। डॉक्टर लोग आजकल उसकी कॉटराइज करते हैं या उसको स्क्यूज करके निकालते हैं या इस तरह का ट्रीटमेंट, लेकिन ये क्या है, ये है कि कबूतर कहे कि मैंने आंखें बंद कर ली अब तो बिल्ली नहीं आ रही, आपने वो स्पॉट्स पीले पीले से मिटा दिए, बाहर की जितनी भी निशानियां हैं वो हमने मिटा दी और हम क्या सोचते हैं कि अब तो बीमारी ठीक होगी, ऐसा नहीं है। इसी तरह के लोग जब वो नहीं जानते, चाहे वो डॉक्टर हैं चाहे पेशेंट आप खुद है, अगर वो नहीं जानते तो अल्टीमेट इस तरह के लोगों को अगर हार्ट अटैक होता है तो वो सडन अचानक हो गया, ऐसा जी अचानक नहीं हो गया, अंदर का शरीर आपको इंडिकेशन दे रहा था, आपको बता रहा था कि मेरे अंदर ऐसा ऐसा है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और जो है लो डेंसिटी है, हाइपोप्रोटीन है, हाई डेंसिटी हाइपो लिपोप्रोटीन है, तो उनकी अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन है, जो ब्रीक जैसे मोटी खंड होती है ना, चीनी होती है, तो उसको खोलने में समय लगेगा और जो ब्रीक चीनी होती है वो बैठ जाती है। इसी तरह की ये जो हमारा एलडीएल है, ये उसमें हमारे खून की नालियां में बैठना शुरू हो जाता है, जैसे बूरा खंड होती है, ब्रीक चीनी होती है, उसी की तरह बैठना शुरू हो जाता है, नालियां भर जाती हैं, जाम हो जाती हैं, और अल्टीमेटली जैसे जैसे और फैट बढ़ता जाता है, अंदर का नालियों का ल्यूमन कम होना शुरू हो जाता है, खून तो उतना ही है, खून तो मान लिया जाए एक आदमी के अंदर 5 लीटर है तो 5 लीटर ही है, जब खून जो नालियां पूरी खुली हुई थी बड़ी आसानी से जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये हुआ अब खून, अब दिल को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ा, खून उसको पहुंचाना है अंगूठे तक, फिंगर टिप्स तक पहुंचाना है, उसको जोर लगाना पड़ेगा। हम बोलते इसको तो ब्लड प्रेशर हो गया, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, या अगर टांगों में कोई रुकावट आ गई, थकावट होगी, कुछ ऐसा हो गया, मांसपेशियां जो इतना काम नहीं कर रही, तो फिर हम कहते डायस्टोलिक हाई हो गया इसका, तो लगातार जो नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो ये सब निशानियां हमें बता रही हैं कि भाई क्या हो रहा है अंदर, जिसकी वजह से कोई ना कोई निशानियां इस तरह की पैदा हो रही हैं। और अगर हम टाइमली इन चीजों को समझ पाए तो फिर हम आने वाले किसी इस तरह के हालात से बच सकते हैं जिसको हम कहो सडन हो गया जी। सडन कुछ नहीं हो गया, किसी को स्ट्रोक हो गया है, हेमरेज हो गया ब्रेन में, तो ये सडन नहीं हो जाता, सडन हो गया है, क्योंकि उससे आने वाली बहुत सी पहली निशानियां हैं उनको हम नहीं जानते। और अगर हम जानते होते तो फिर हम उसका उपचार उस वक्त करते, या जो उपचार किया जा रहा है, जैसे मैंने ये कहा कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली और हमने कहा कि अब बिल्ली नहीं आ रही, बिल्ली तो आ रही है, या किसी डॉक्टर ने ये कोलेस्ट्रॉल के साइन वगैरह देखे आंखों में और उसने उसका निवारण कर दिया और फिर कहा कि नहीं अब तो ये ठीक हो गया, इट्स नॉट। अंदर से जब तक वो खून की नाड़ियां पूरी तरह साफ नहीं हो पाती, जब तक उसके बाद और डिपोजिशन होनी बंद नहीं होती, तब तक आप नहीं कह सकते कि भाई हमने वो ठीक कर दिया, अब बिल्ली नहीं आ रही। बिल्ली तभी नहीं आएगी जब आपने उसके कारण रिमूव कर दिया, पहले की बात आपने जान लिया, जब जान लिया तो फिर उसको रिमूव कर दिया, बाहरी से नहीं अंदर से, क्योंकि बाहर आपने कोई मिट्टी नहीं लगाई कि यहां पर स्पॉट बना दिए हैं, अंदर से हुआ है जो भी कुछ हुआ है, उस अंदर को जिसकी वजह से ये हुआ है, जब हमें ये जान पाएंगे और उसको करेक्ट कर पाएंगे तो फिर ये नहीं कहना पड़ेगा कि सडन हो गया है, अचानक हो गया है, ऐसा नहीं होगा। तो मैं वही बातें आप सब लोगों के नजर में ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि छाती में, बेसिकली छाती की बात नहीं है, पेन एक ऐसा लफ्ज है, मैंने बार बार बोला कि सबसे छोटा लफ्ज है किसी भी बीमारी को, किसी भी शरीर की आपदा को बताने के लिए हमारे पास दर्द पेन एक छोटे से छोटा लफ्ज है। अब उसके बाद पेन का एक्सप्लेनेशन है कि भाई ये पेन सांस लेने में होती है, ये पेन सांस बाहर छोड़ने में होती है, ये पेन चलने से होती है, ये पेन खाने से होती है, किस तरह क्या है वो आगे एक्सप्लेन करेगा कि ये दर्द का अगला नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। लेकिन सबसे पहला लफ्ज जो है किसी बीमारी को इंडिकेट करने का वो है पेन, वो मैंने आपको बता दिया। और अगर किसी के रास्ते में कोई रुकावट आ रही है, शरीर का ताना बाना तो यही है ना कि मुंह से खुराक खाई, जो इसमें कार्रवाई होनी है, जो इसके हजम होना है, शरीर को क्या चाहिए रोजाना के लिए, उसको विटामिन चाहिए, उसको मिनरल्स चाहिए, तोड़ फोड़ के लिए, जैसे हम घर की रिपेयर करते हैं तो सीमेंट चाहिए ना, हम ईंट को ब्रेकेज होगी तो उसको सेट करने के लिए सीमेंट चाहिए ना, तो इसी तरह विटामिन सी चाहिए, हमारे विटामिन के चाहिए, कैल्शियम चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। तो खुराक खाते हैं उसे वो निकल जाता है, वो शरीर उससे ले लेता है, उसका सिस्टम अलग है, जो लंबा लेक्चर उसको हम बाद में बताएंगे। वैसे मैंने कई बार बताया प्रोग्राम के अंतरियों से खुराक से वो तत्व कैसे निकाले जाते हैं, कैसे वो खून में शामिल होते हैं, या यूं कहा कि खून कैसे नया बनता है, ये सब बातें बता दी, वेस्ट जो है वो निकल जाता है। इसी तरह ही इसके चलन के हिसाब से ये जो खुराक हमने भेज दी शरीर में, इसका निवारण हो गया, इसका खून बन गया, अब ये खुराक सभी जगह पहुंचानी है तो काम किसका हो गया, हार्ट का हो गया, हार्ट ने पहुंचानी है, जहां जहां जिसकी खुराक की जरूरत है वहां पहुंचानी है। तब इस चलते हुए सारे रास्ते में अगर कहीं कोई रुकावट हो गई तो यकीनन अगर हम इसको बारीकी से बात करेंगे ना कि हम यहां से चले हैं, किस शहर को जाना है, रास्ते में कौन कौन से शहर आते हैं, कहीं रास्ते में कुछ ट्रैफिक जाम तो नहीं थी या एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, उसे हम जान पाएंगे कि भाई कहां पर रुकावट थी, क्यों देर होगी? इसी तरह ही इस शरीर के जितने भी नौ सिस्टम है ना, उन नौ सिस्टम का अपना अपना एक चलन है, अपना एक रूटीन है कि उनको कैसे शुरू करना है और कैसे समाप्त करना है। एक साइकिल है ना, नाक से हवा आनी है, फेफड़ों में जानी है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड आनी है, बाहर निकल जानी है। इसी तरह खून खुराक लेकर पूरे अंगों में जाएगा, फेफड़ों से हवा लेगा, ऑक्सीजन लेगा, सारे अंगों में जाएगा, वहां से वापस आएगा। पेशाब खून से खून जाएगा किडनी में, इससे वो पेशाब फिल्टर करेगी और फिल्टर करके खून को वापस भेज देगी और जो वो पेशाब है उसको बाहर निकालने का रास्ता दिखा देगी। तो मतलब जितने भी सिस्टम है ना, नौ सिस्टम इस बॉडी में काम करते हैं, उनका अपना अपना एक चलन है। और एज ए डॉक्टर हम लोगों को ये पता होता है कि भाई किस किस सिस्टम का क्या क्या काम है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, वो एक रूटीन हो गया ना। और अगर उन रस्तों में, बहुत आसान तरीका है, उन रस्तों में अगर कोई रुकावट आ जाएगी तो फिर हमें बाहर क्या पता लगेगा। बाहर डॉक्टर के पास सुबह की बात है, सबसे पहले हमें क्या पता लगेगा कि मेरे शरीर में क्या हो रहा है, किस सिस्टम के में जो नुक्स हो रहा है। तो वही बातें मैं आपको इन प्रोग्रामों में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए इतना आसान हो जाए। यार कोई बात नहीं, पता ही है जो हो रहा है, तो इसका मतलब ये चीज हो रही है, आसानी से आप जाएंगे उसके लिए जैसी मदद आपको चाहिए हॉस्पिटल में या किसी जगह, आप सीधे जाकर उसको ले सकेंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है वो कह रहा है, तो फिर आप वही कहेंगे नहीं जी सडन हो गया हार्ट अटैक, नहीं जी सडनली उसको स्ट्रोक हो गया है, अब तो बाहर से ठीक ठाक आया था, अब तो ठीक ठाक रोटी खा के बैठा था, अब उसको ऐसे हो। यही बातें आप सुनने को मिलती हैं, और इन्हीं के लिए ही जो ये मेरे प्रोग्राम है ना, उनका मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग ये ना कहें अभी तो ठीक ठाक था, अभी तो अचानक ये ऐसा हो गया है। नहीं, आपको पता हो घर के जितने भी मेंबर हैं उनके शरीर में इस तरह की कोई भी अगर निशानी आपको दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। और शुरुआती दौर में अगर आप किसी निशानी को जान लेते हैं और उसका उसी वक्त निवारण कर पाते हैं तो वो बहुत आसान हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, समय टाइम पास कर देते हैं, तो आने वाले समय में और ज्यादा यह भयानक रूप हो जाएगा, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वही बातें ये प्रोग्रामों में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली बात मैंने दर्द की बताई, दूसरी बात चेस्ट में प्रेशर होना शुरू हो जाता है, तीसरी बात टाइटनेस होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि स्पेस तो उतनी ही है जितने जितने अंग हैं, और किसी अंग में कोई रुकावट होगी तो वो फैलेगा, फैलेगा तो दूसरे अंगों को भी जगह लेगा, ऑटोमेटिकली उसको कंजेशन होना शुरू हो जाएगा या टाइटनेस होनी शुरू हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी। या अगर आप देखते हैं कि जैसे मैंने ये स्पॉट आपको बताए किसी के चेहरे में ऐसे है, तो आप जान जाएंगे कि इस बंदे का कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसको अभी से टेक केयर करना चाहिए, नहीं तो किसी दिन इसको हार्ट अटैक हो सकता है। इसी तरह ही आप देखते हैं आंखें पीली पीली हो गई हैं, अब पीली पीली होगी तो सभी, अब तो सभी लोग जानते हैं आंखें पीली होगी तो पीलिया हो गया भाई, जॉइंटिस हो गया जी, हम लोग मेडिकल टर्म उसको एक टेरिस बोलते हैं और वैसे जॉइंटिस बोलते हैं, आप लोग सब पीलिया सभी लोग जानते ही हैं। ये क्या है, ये शॉर्ट सी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ, ये वो है जो निशानियां बाहर आ रही हैं, अंदर क्या घटित हो रहा है वो हमें बता रहा है और उन्हीं से हम जान पा। अब मान लीजिए किसी के आंखों के नीचे नीचे से बहुत सी स्वेलिंग आई हुई है, ऐसे जैसे पानी से भरा भरा पिलपिला बैग रखा होता है, तो ऑटोमेटिकली आप ये जान पाते हैं कि पानी क्यों रुकता है, साल्ट डिप्लेशन हो गया। साल्ट का काम है पानी को चूसना, बरसातों के दिनों में ना अगर आप किचन क्या जो आपका नमक वाला है ना पॉट, उसको अब थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ दें, हालांकि ये अंदर है, बरसात बाहर हो रही है, आप देखेंगे वो गीला हो जाएगा। इसको मॉइस्चर सक करने की कुदरती गिफ्ट है, कुदरती इसकी जो है ना कैफियत है, और वो चूस लेता है, गीला हो जाता है। इसी तरह ही अगर कहीं पानी रुक गया है, अगर लगता है कि एक्सेसिव डिपोजिशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई इसमें साल्ट रुक गया है, जिसको बाहर निकल जाना चाहिए था वो नहीं निकल पा रहा है। या कोलेस्ट्रॉल की बात मैंने आपको भाई वो पीले पीले से स्पॉट्स हो जाते, या किसी की टांगे अब आया चार पाई पे बैठा, फतेह तो ही हुई सब कुछ हुआ, और उसने अपना जूते वगैरह निकाला चार पाई के ऊपर बैठा तो देखो उसके तो पांव ही छूटे हुए हैं। उसकी टांग ही सूजी हुई है। तो आप जब इस तरह की निशानियां देखते हो ना, तो ये सब आप सब लोगों को बताएंगी कि इसके अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा है। अगर इसकी टेक केयर ना की गई तो आने वाले समय में इसका कोई रूप भयानक हो सकता है। ठीक है, अगर खून सप्लाई नहीं जा रही है तो अल्टीमेट क्या होगा, आपने देखो कि ज्यादातर बुजुर्गों को, बड़े यंग बच्चों में तो कम होता है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्गों में क्या होता है, उंगलियों के जो पोते हैं या टिप्स जिसको बोलते हैं फिंगर टिप्स, या हमारे जो पांव के उंगलियां हैं उनके फिस्ट बोलते हैं उनको, वो फिस्ट के आगे आगे सब कुछ ड्राई हो जाता है। जैसे कहीं खेत में हम पानी दे रहे हैं ना, तो पानी दे रहे हैं जहां तक पानी गया ठीक है, और कुछ ऊंचा टीबा रह गया, ऊंचा सी चीज रहेगी, वहां पर पानी नहीं गया तो क्या होगा, वहां की फसल ठीक नहीं होगी, वो सूख जाएगी। इसी तरह ही जहां दूर के हिस्से में, जिनको हम बोलते हैं डिस्टल पार्ट्स, ये जो हमारे टिप्स है ना, ये हार्ट से सबसे दूर है, पांव हमारे हार्ट से सबसे दूर है, और इनमें जो सप्लाई मिलेगी, जैसे नहर की टेल होती है ना, वहां पर पानी बहुत कम पहुंचता है, क्योंकि उससे पहले जितने भी दाने लगे हुए हैं वो पानी खींच लेते हैं, पीछे पानी बहुत कम जाता है, और वहां पर वो बोलते हैं टेलें तो सूख गई हैं। इसी तरह ही वो हमारे टिप्स फिंगर्स के जो सूखने शुरू हो जाते हैं, तो क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई दिल खून तो पहुंचा रहा है, या तो खुराक की कमी हो गई है, और या जो पहुंचाने वाली मशीनरी है, ट्रैफिक है, वो उसमें कमी आ गई है, और इन चीजों से हम उसकी खोज करने शुरू कर देते हैं कि किसमें क्या हो रहा है। तो वही बातें मैं आपको बता रहा हूं कि अगर चेस्ट की बात, क्योंकि चेस्ट में मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है हमारे, वो फेफड़े हुए, हार्ट हुआ, और ये जो मीडिया साइनी के अंदर रहने वाले अंग है, इसोफेगस हुआ, या ब्रोंकस ट्यूब हमारी हो गई, इस तरह की जो चीजें, इनके जो साइन एंड सिम्टम पैदा होंगे वो यही होंगे कि भाई टाइटनेस हो रहा है, पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होनी शुरू हो जाएगी, सडन स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड टाइप के फटीग, यार ठीक ठाक था यार, अभी काम करने को मन नहीं कर रहा, बड़ी सुस्ती हो गई है, हाँ जी क्यों हो गई है, खुराक तो आपने खाई थी, खाना तो आपने खाया था, जो आप पहले करते थे रूटीन में वही आप कर रहे थे, बावजूद इसके भी आपको खुराक, आपको फटीग क्यों होगी, आज क्यों थकावट होगी, पहले तो नहीं थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो खुराक, क्योंकि खुराक वही है जो पहले आप खाते थे, खुराक वही है जो दूसरों ने खाई है, वही आपने खाई है, लेकिन आपको फटीग होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो नॉर्मल नहीं हुई, बॉडी में खुराक के जितने भी तत्व थे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं हुई। और अगर हमें ये लगे कि किसी खास तत्व की जो कमी पेशी हमारे दिखाई देती है ना, जैसे आयरन की कमी पेशी होती है, तो हम आंखों के नीचे लेंस देखते हैं तो वो जो है वो अनीमिक हमें दिखाई देते हैं, रेड नहीं दिखाई देते, जीभ देखते हैं वो रेड दिखाई नहीं देती है, इस तरह आयरन की जो और निशानियां हैं वो हम देखते हैं तो हम बोलते हैं नहीं है इसमें वो उसकी कमी है, और कई साल्ट की कमी पेशी होती है तो क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं हमारे फिंगर में, टिप्स में, या बेड नेल जिसको हम बोलते हैं, इसमें ऐसा होना शुरू होता है, शिवतरें सी उभरनी शुरू हो जाती है, ये क्यों हो जाती है, मतलब हमारे शरीर में इसको जोड़ने वाला जो काम था साल्ट का, वाइटामिन सी का, वो नहीं हो रहा, अब खुराक तो वही है जिससे पहले पूरा होता था, अब क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि हमें खोज करते करते ये पता चलेगा कि हमारी खुराक से या तो आयरन, या तो सोडियम, नमक वगैरह, या विटामिन सी, ये असिमिलेट नहीं हो रहे हैं बॉडी में, मतलब खून में खुराक से नहीं जा रहे हैं, और इसीलिए इनकी सप्लाई आगे नहीं हो रही है, और फिर हम खोज उसकी करेंगे ना, उसका हल करेंगे, फिर हार्ट का तो नहीं ना करेंगे, हार्ट तो अपना काम कर रहा है, उसको तो जो आपने देना था दे दिया और वो आगे पहुंचा रहा है, लेकिन आपका जो आप दे रहे हैं हार्ट को उसमें ही कमी पेशी आ गई। तो इसी तरह हम खोज पड़ताल करते करते इस चीज पर पहुंचेंगे कि ट्रैफिक में चलते चलते रुकावट कहाँ है, खुराक हमने दे दी, आंतरियों में गई, आंतरियों से आंतरियों ने स्क्वीज करके जो मटेरियल चाहिए था बॉडी को वो खून में मिला दिया, उसका तरीका है वो आगे बताएंगे हम, और वो दे दिया, लेकिन या तो इस असिमिलेशन प्रोसेस एक खुराक से निचोड़ कर जो तत्व इसको खून में मिक्स करने थे वो नहीं किए। या ऐसा हो सकता है कि आप जो खुराक खा रहे हो उसमें वो जरूरी तत्व है ही नहीं, कमी पेशी है। तो इसलिए डॉक्टर सप्लीमेंट देते ना, ये तुम आयरन के कैप्सूल ले लो जी, तुम विटामिन सी की गोली रोजाना लिया करो जी, ये तुम कैल्शियम की गोली, क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, दे अज्यूम, वो सोचते हैं कि भाई इनको जो खुराक दी जा रही है उस खुराक में इन चीजों की कमी है। और अगर वो जाने कि भाई नहीं, खुराक तो इसकी बैलेंस है, जो खुराक है वो तो वही है जो दूसरे घर के मेंबर खाते हैं और उनको तो ऐसी कमी नहीं है। बड़ी आसान सी बात है ना एनालिसिस करना, एक घर के एक ही मेंबर को वही दाल वही खा रहा है, वही सब्जी वही खा रहा है, वही रोटी वही खा रहा है, दूसरों को क्यों नहीं आयरन की कमी हुई, दूसरों को क्यों विटामिन सी की कमी नहीं हुई, दूसरों के शरीर में कैल्शियम क्यों पूरा नहीं हुआ या हुआ है, तो इस एक शरीर में ये कमी पेशी क्यों हो गई है? इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसने असिमिलेट नहीं हो रहा है। तो फिर हमने टारगेट कर लिया ना, हमने टारगेट कर लिया कि अंतरियों से इस तरह की चीज जिसकी निशानियां, क्योंकि हमारे पास निशानियां हैं कि कैल्शियम कम होगा तो क्या होगा, आयरन कम होगा तो क्या होगा, बॉडी में विटामिन सी जिसको स्कर्वी वगैरह बोलते हैं, ये विटामिन सी कम होगा तो क्या होगा, सोडियम अगर कम होगा तो क्या होगा, या सोडियम ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये सब हम जानते हैं। और उसी की भाषा से हमें बाहर निशानियां उसकी दिखाई देंगी जिससे हम ये अंदाजा लाएंगे कि भाई इसके शरीर में कैल्शियम की कमी है, इसके शरीर में सोडियम की कमी है। तो भाई फिर हम खुराक की शनाख्त तो कर सकते हैं, भाई तुमको ये खाना है, वो बोलता है ये तो मैं खा ही रहा हूँ, खुराक तो मेरी ऐसी नॉर्मल है और घर के मेंबर को किसी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं, तो फिर क्या हुआ? फिर मतलब स्पष्ट हो गया आपकी आंतरियों में जो असीम जो निचोड़ कर जो खुराक का निचोड़ निकल कर खून में शामिल होता, वो मेसेंट्री का प्रोसेस है, वो हम बताएंगे आपको, ऐसा है तो फिर नुक्स तो वहां पर हुआ ना, ब्लड में तो ना हुआ ना, हार्ट में तो ना हुआ, हार्ट का तो काम वो तो चल रहा है, जो आपने मुझे दिया वो मैं सप्लाई आगे कर रहा हूं। इसी तरह ही सांस की बात आएगी, इसी तरह ही किडनी की बात आएगी, इसी तरह ही जितने और अंग हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, अगर किसी फंक्शन में कोई कमी पेशी आ रही जिसको हम बीमारी बोलते हैं, किसी भी अंग में कोई कमी पेशी होती है उसके काम करने के ढंग में या काम का जो रिजल्ट सामने आ रहा है, रिजल्ट क्या है, हार्ट नॉर्मल कम कर रहा है तो 72-80 पर मिनट पल्पिटेशन हो रही है, और अगर कम कर रहा है नहीं सही कर रहा और आगे उसकी कमियां पीछे भी पैदा हो रही हैं तो फिर वो बीमार है। और अगर हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा नहीं, ये तो 100 टाइम्स पर मिनट चल रहा है, तो मतलब समथिंग इज रॉन्ग इसी एरिया में। इसी तरह ही हमने ऑक्सीजन की बात आपको बताई थी कि ऑक्सीजन लेनी का काम है ना फेफड़ों का, इसको खून में मिलाना काम है फेफड़ों का, फिर ये खून वापस हार्ट को जाएगा और फिर हार्ट का काम इसको सप्लाई करना। बावजूद इसके भी वो डॉक्टर लोग देखा ना, वो उंगली में लगाकर देखते कहते ये ऑक्सीजन पूरी है कि नहीं है, तो मतलब क्या हुआ कि जो खून की सप्लाई हार्ट से हो रही है शरीर को उसमें ऑक्सीजन की कमी आ रही है, क्योंकि हार्ट का तो नुक्स नहीं ना, हार्ट को तो जो मिला उसमें कंटेनर ने भर लिया, कंटेनर जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, रेड लाल खून के कण, ये हमारे खाली डब्बे होते हैं, वेगन होते हैं और इसमें हम ऑक्सीजन भर के ले जाते हैं और दिल ऑक्सीजन इनमें भर के ले जाता है। अब जो पीछे से ये ऑक्सीजन नहीं आई है तो बेचारा क्या करेगा, तो खाली डब्बे जाएंगे, सांस फूलेगा और उसको बार बार, हार्ट तो यही कर सकता है ना कि मैं 72-80 बार एक मिनट में चलता हूँ, नहीं भाई मैं 100 बार चलता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना ऑक्सीजन मैं उतना फटाफट पहुंचाता रहूं, और ऑक्सीजन देना या लेना किसका काम है आपका, तो हम वहां पहुंच जाएंगे ना कि भाई फेफड़ों में इस तरह की कोई कमी आ गई है कि वो ऑक्सीजन तो बाहर से क्योंकि एनवायरमेंट से ले रहा है, उसके सांस लेने और फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने में कोई रुकावट है, तो फिर हम उस एरिया की फाइंड आउट करेंगे। तो वही बात मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि जो जनरल साइंस से उसमें इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट बीट हो जाएगी, पेल्पिटेशन हो जाएगा, ब्रीदिंग का हम जानते हैं कि भाई 14 से 16 बार पर मिनट एक में सांस को चलना चाहिए जिससे हमारी ऑक्सीजन पूरी होती है नॉर्मल आदमी में। अगर 14 से 16 नहीं को 20 बार 24 बार 40 बार जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको 40 बार सांस लेता है, क्यों? क्योंकि उसको उतनी जरूरत है। इसके हिसाब से यंग आदमी अगर 14 से 16 बार नहीं कम सांस ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, बार बार इंस्पिरेशन ऐसे कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है वो ग्रेस्प नहीं कर रहा, वो ग्रेस्प करके आगे उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, फेफड़ों में कोई नुक्स होगा या रस्ते का जो एरिया है ब्रोंकाइटिस का उसमें कोई नुक्स होगा तो हम लोकलाइज कर देंगे ना, तो उसकी निशानियां क्या है, क्या आएंगी? आजकल तो टेक्निक्स आ गई ना ऑक्सीजन चेक करने की, या फेफड़ों को हम देखते हैं कि किसी को निमोनिया हो गया, किसी को ब्रोंकाइटिस होगी, किसी को प्लूरसी होगी और उसकी वजह से उनको ऑक्सीजन हमेशा पूरी हो ही नहीं सकती। तो ये सब निशानियां, और जैसे फिजिकल की बात हमने की है तो स्वेलिंग वगैरह, एडिमा वगैरह, ये सब इस बात की चीज है कि भाई जो वापसी वाली ट्रैफिक है, जो अंगों में खुराक गई है, खून गया है, उसकी वापसी होनी है, वो नॉर्मल नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो इसका मतलब है स्वेलिंग हो रही है। और ये जो स्वेलिंग होगी तो कहां से शुरू होगी भाई? बैकवर्ड, पांव की तरफ, हाथ की तरफ, जितने भी डिस्टल पार्ट हैं बॉडी के उनमें स्वेलिंग होगी, फिर वो आगे आगे बढ़ती आएगी, आगे आगे बढ़ती आएगी, और अल्टीमेट ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो चेहरे में भी आ जाए और चेहरे से पहले आपके हार्ट में आ जाए, और जब हार्ट में आनी शुरू हो जाएगी तो उसके ऑटोमेटिकली जैसे फेफड़ों में आ गई तो सफोकेशन के साइन आ जाएंगे, इसी तरह ही जो पेरिकार्डियम के साइन आने शुरू हो जाते हैं और बहुत से, इनको हम तरतीब में आपको बताएंगे एक एक करके। सिर्फ यही सोचने की जरूरत है कि अगर वापसी ट्रैफिक में कोई रुकावट है, अगर तो जाने वाली ट्रैफिक में रुकावट है तो उसकी निशानियां मैंने आपको बता दी कि आयरन कम है तो क्या निशानियां आएंगी, सोडियम कम है तो फिर क्या आएगा, और कैल्शियम कम है तो फिर हमारे शरीर में कैसे कैसे आएगा। और जो वापसी चीज आने वाली है, ये जो वापसी जाने वाली अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर जो स्वेलिंग होगी वो डिस्ट्रल पार्ट, डिस्ट्रल पार्ट हम उसको बोलते हैं जो हार्ट से दूर है, उनमें इस तरह की कंडीशनें जो है आनी शुरू हो जाएंगी। फिर नाखून की बात मैंने आपको कही थी कि भाई आमतौर नाखून फ्लैट होते हैं, आप देखिए अपने अपने अनाव फ्लैट होते हैं, पर कुछ लोगों के नाखून ऐसे होते हैं जैसे एक बॉल होता ना, कौली होती जिसको हम बोलते हैं, हम किचन में रखी उसको अगर उल्टा बैठा रहे, उसका मुंह नीचे कर दें तो ऊपर को उभरा हुआ होगा ना, तो अगर किसी के नेल इसी तरह उभरे होते हैं तो उसका हम बोलते हैं क्लबिंग नेल्स। और ये जो क्लबिंग नेल हैं ये इस तरह के सूचक है, इंडिकेटर हैं कि या तो फेफड़ों में या तो हार्ट में, मींस चेस्ट के एरिए में, चेस्ट के एरिए में कोई ना कोई इस आदमी को नुक्स है, मे बी बाई बर्थ, मे बी आफ्टर दैट, और कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। और फिर हम डेट्स वेट पूछते हैं भाई ये आपको कब हुआ या कैसे हुआ, और अगर वो बोलता है कि मैं जो बचपन था मुझे निमोनिया हुआ था, हाँ जी अब डॉक्टरों ने तो एंटीबायोटिक दे दिया होगा, अब डॉक्टरों ने अपनी ओर से उसको जमा कर दिया, लेकिन क्या हुआ, जो अंदर आपके जमा कर दिया जो एल्वोलाइज थी जिसमें ऑक्सीजन जानी थी वो जगह कम हो गई है, ह्यूमन अंदर का कम हो गया है। और अगर मान लिया जाए वो पहले एक लीटर ऑक्सीजन ले लेती थी, अब वो एक लीटर नहीं ले पाती, उससे सांस भी तेज होगा, उससे सांस जो दौड़ सकता था वो उतना दौड़ नहीं पाएगा, सांस ज्यादा फूलेगा दूसरे लोगों से। अगर जिम भी जा रहा होगा, मैं तो जिम जाता हूँ, अब जिम भी जाएगा तो दूसरे लोगों से ज्यादा उसका सांस फूलेगा। ये सब चीजें इंडिकेट करेंगी कि आपकी जो एल्वोलाई थी वो बचपन से लेकर या अब कुछ हो गया, तो या तो अब कुछ हो गया है उसकी वजह से ऐसा हो गया, क्योंकि आगे हम आपको बताने वाले हैं कि जो हार्ट में इस तरह के जो नुक्स होते हैं उनको हम अलग अलग डिवीजन करके जानते हैं आसानी से कि अगर लेफ्ट साइड हार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो, या राइट साइड हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो, क्योंकि लेफ्ट साइड का काम और है, राइट साइड का काम और है। इसी तरह कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको कंजेंटल हार्ट डिजीज बोलते हैं, जिनको बचपन से ऐसी कुछ चीजें हुई है और वो भी हम डिटेल में अफसरों को बताएंगे कि क्या कैसा हो सकता है, फिर उसकी निशानियां क्या हो सकती हैं। और ये जो मोटिव या कंजस्ट कई बोलते CHF, बड़ा सुना होगा नाम अपने लोगों को, जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जिसको हम बोलते हैं, वो क्यों ऐसा होता है, उसकी और सब क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। ये बात मैंने शुरू में कह दी थी कि कुछ भी अचनचेत नहीं होता, उसकी निशानियां उससे पहले हमें दिखाई देती हैं। अगर हम इतने जानकार हो जाएंगे, जैसे जो जो जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, नाखून आपने देखकर ड्राई हो रहे हैं या नाखून में क्रैक्स आ रहे हैं या नाखून क्लबिंग क्लबिंग नेल्स है या चेहरे में पीलापन है या ये जो जो है स्पॉट्स बने हुए पीले पीले रंग के, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये हमें बता रही हैं कि अंदर का सारा कुछ ठीक ठाक नहीं है। और वो हम ठीक ठाक कर लें, जान पाए उसको, तो जब ठीक कर लिया तो फिर हार्ट अटैक कोई नहीं कहेगा कि मुझे सडन हो गया। नहीं प्रबंध कर पाए अलग बात है, नहीं उस तरह का उपचार मिल पाया वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जान गए हैं और उसका उपचार कर पा रहे हैं तो फिर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि कहो इसको तो सडन स्ट्रोक हो गया, इसको तो सडन हार्ट अटैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो आम तौर पे छाती में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो लोग सडन बोलते हैं, सडन तो नहीं होता, लेकिन हाँ किसी वक्त कोल्ड स्वेटिंग, कोल्ड परस्परेशन, पंजाबी में उसको बोलते हैं त्रेलियां आना, ठंडे पसीने आना, इस तरह की क्लबिंग नेल्स है या चेहरे में पीलापन है या ये जो जो है स्पॉट्स बने हुए पीले पीले रंग के, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये हमें बता रही हैं कि अंदर का सारा कुछ ठीक ठाक नहीं है। और वो हम ठीक ठाक कर लें, जान पाए उसको, तो जब ठीक कर लिया तो फिर हार्ट अटैक कोई नहीं कहेगा कि मुझे सडन हो गया। नहीं प्रबंध कर पाए अलग बात है, नहीं उस तरह का उपचार मिल पाया वो अलग बात है, लेकिन अगर आप जान गए हैं और उसका उपचार कर पा रहे हैं तो फिर कोई ऐसा नहीं कहेगा कि कहो इसको तो सडन स्ट्रोक हो गया, इसको तो सडन हार्ट अटैक हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जो आम तौर पे छाती में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको वो लोग सडन बोलते हैं, सडन तो नहीं होता, लेकिन हाँ किसी वक्त कोल्ड स्वेटिंग, कोल्ड परस्परेशन, पंजाबी में उसको बोलते हैं त्रेलियां आना, ठंडे पसीने आना, इस तरह की कंडीशन जो है हो सकती है, ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि भाई

हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ये जो आमतौर पर छाती में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिनको वो लोग सडन बोलते हैं, सडन तो नहीं होता, लेकिन हाँ किसी वक्त कोल्ड स्वेटिंग, कोल्ड परस्पिरेशन, पंजाबी में उसको बोलते हैं त्रेड़ियां आना, ठंडे पसीने आना, इस तरह की कंडीशन जो है हो सकती है। ये भी इस बात की इंडिकेशन है कि भाई इसको ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये इस तरह का स्वेटिंग वगैरह का कंडीशन पैदा हो रही है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की मैंने आपको बोल ही दी है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ केवल फेफड़ों की वजह से नहीं ना होती, हार्ट की वजह से भी होती है, क्योंकि फेफड़ों का काम है ऑक्सीजन लेना और आगे सप्लाई करना, और उसका हार्ट का काम है, अगर कम सप्लाई की है उसने तो फिर हार्ट का काम है, अच्छा भाई तुम जल्दी जल्दी मुझे सप्लाई करते रहो, मैं जल्दी जल्दी आगे देता रहूंगा, तो पैल्पिटेशन साथ में होगा, दिल का ज्यादा धड़कना, नॉर्मल से ज्यादा धड़कना, ये साथ साथ होगा। तो इस तरह की जो निशानियां हैं ये सब हम आप जान सकते हैं, और कुछ एक हालातों में ऐसा हार्ट चल रहा है, रेगुलर चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने देखा कि हार्ट बीट या पल्स को सभी देख रहे हैं, बीमार हो ना कोई तो ऐसे हाथ पकड़ लेते हैं, सभी लोग पकड़ लेते हैं, तो आमतौर पर आपका जो अंगूठे वाला हिस्सा है ना, अंगूठे के जहां बेस है अंगूठे का, वहां पर अगर आप दाहिने हाथ का बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे रिस्ट में अगर हाथ रखेंगे, आपकी ये तीन उंगलियां आपको बता देंगी कि नीचे जो पेल्पिटेशन का जो पल्स चल रही है वो, क्योंकि वो आर्टरी है, वो जो चल रही है वो किस स्पीड से चल रही है, क्या रेगुलर चल रही है कि इररेगुलर चल रही है। अगर इररेगुलर चल रही है, तेज चल रही है, तो ये हमें साबित करेगी कि हार्ट नुक्स हार्ट में नहीं है, वो तो चल रहा है, नुक्स फेफड़ों में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और इसी तरह ही अलग अलग वाल्व्स की जो अलग अलग कंडीशन है उसके बारे में मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि कहां से कहां वाल्व खून भेजता है, अगर उसमें कोई नुक्स हुआ तो निशानियां क्या होंगी, और कहां से कहां कोई वाल्व खून भेजता है दिल में, और अगर उसमें कोई नुक्स हो गया तो निशानियां क्या होंगी, ये आने वाले चैप्टर में ऐसा हम आप सब लोगों को बताएंगे। तो आमतौर पर ये जो सिम्टम है हार्ट के, क्योंकि हार्ट का पर्पज क्या है, मेन पर्पज हार्ट का ये है कि जो खून आ गया वापसी वाला उसको फेफड़ों में पहुंचाना, पहली बात जो खून सारे शरीर से वापस आ गया है उसको फेफड़ों में पहुंचाना, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सिस्टम, पल्मोनरी आर्टरी, और वो पल्मोनरी आर्टरी वहां से लेकर जा रही है खून फेफड़ों में, और मान लिया जाए फेफड़े को निमोनिया हुआ है, फेफड़ों में तो सूजन हो गई है, फेफड़ों में तो ब्रोंकाइटिस है, या किसी भी तरह वो जो एल्वोलाई जो इस खून को ग्रहण करेंगी और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का मौका देंगी और इसमें बाहर से आए सांस से ऑक्सीजन को अंदर जाने देंगी, वो कम होगी, उसमें सूजन आ गई, तो उसकी वजह से क्या होगा, पीछे बैकलॉग लग जाएगा ना, कहीं भी इतनी तो ऑक्सीजन जा नहीं रही, बैकलॉग लग जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कि वो जो पल्मोनरी वो जो नाड़ी है जिहड़ी राइट वेंट्रिकल से लेकर खून फेफड़ों में जा रही है उसमें बैकलॉग लग गया है, उसकी अलग निशानियां हैं, ठीक है। और ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आसानी से आप जान पाए स्वेलिंग है, डिस्निया है, वीकनेस है, कि फटीग हो गया, डिस्कम्फर्ट हो गया, हैवीनेस ऑफ बॉडी लगता है कि शरीर बहुत भारी हो गया है, नेल की बात मैंने अभी आप सब लोगों को बता दी है, और नेल ब्लू हो गए हैं, ऑक्सीजन की कमी है, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये पूरे के पूरे हार्ट और लंग्स के साथ कंसर्न्ड हैं। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में मैं आपको अलग अलग करके बताने वाला हूं कि ये तो सभी निशानियां थी ना, पल्पिटेशन में फ्लटरिंग, वीकनेस है, डिजीनेस है, नाजिया, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब मैं बता चुका हूं आप सबको इन पहले प्रोग्रामों में, पर ये सब हो रहा है तो मतलब इसका स्पष्ट है कि छाती में ही कोई नुक्स है। अब इसको हमने आइडेंटिफाई करना है, अब जब आइडेंटिफाई

0: करने की बात आएगी तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे हार्ट से। तो हार्ट है, उसके बारे में हम जानते हैं। मैं फिर दोबारा उसको जब अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे ना, तो उसमें हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि हार्ट की सरफेस एनाटॉमी क्या है, कहां पर है हार्ट, और हार्ट का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, कहां पर क्या क्या चीज। बाहर से देखेंगे तो कहां पर क्या चीज हमें दिखाई देगी, हमारा कितने सारे वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, माइट्रल वाल्व है, दूसरा फोरामेन ओवल है, उसमें सेमीलूनर वाल्व, पल्मोनरी वाल्व है, सेमीलूनर एओर्टिक वाल्व है, ये सब चीजें जितनी भी हैं कहां कहां पर है। बाहर से आप कैसे जानेंगे कि कहां पर है, और मान लिया जाए इनमें से कोई नुक्स हो गया तो फिर आपको कैसे पता चलेगा, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने पल्मोनरी की अभी बात की ना, तो ये भी एक अलग चैप्टर है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे, आपको बाहर कैसे पता चलेगा। हाँ जी, तो ये सब चीजें अगले आने वाले चैप्टर में मैं आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि हार्ट को हम समझ, हार्ट अटैक हो गया जी, सभी लोग ये जानते हार्ट अटैक हो गई। अरे भाई, हार्ट अटैक हो गया तो उसकी अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि मैंने ये बताया कि हार्ट का सर्कुलेशन जो है वो डिवीजन में है, वो दो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे खून उसको मिलता है ना हार्ट को, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी का जो मेन पेंडर है वो आगे डिवीजन हो जाती है दो भागों में, ये इसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, दूसरे को हम लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। अफसोस की ये बात है कि राइट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से मिलती ही नहीं है, एक दूसरे का सहयोग ही नहीं करती है। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी में कोई नुक्स हो गया तो हो गया भाई तेरा, तुम जानो, बाएं में हो गया तो उधर तुम जानो, मेरा तेरे के साथ लेना देना कुछ नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई जो है ना रोटी बेटी की सांझ नहीं है तुम्हारी, यही शरीर में ऐसा चलन है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर, इसको अलग, बेसिकली ये जो दो चीजें हैं ये कोरोनरी आर्टरी के साथ संबंधित है। किस तरफ सप्लाई नहीं हुई, किस तरफ के अंग जो है वो काम नहीं कर रहे या वाल्व काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ संबंधित है। और वो मैं आप सबको बताऊंगा कि अगर लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है तो क्या साइन आएंगे, राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो क्या हाल आएंगे, इन्हीं में से ये जो मैंने अभी सब आपको बताए ना, ये जिसको फिर मैं बोल दूं, पेन है, प्रेशर है, टाइटनेस है, सडन स्वेलिंग हो गई है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई है, अनएक्सपेक्टेड फटीग हो गई है, डिजीनेस हो गई है, इररेगुलर या रैपिड पल्स हो गई है, नौजिया वगैरह होना शुरू हो गया, जी कसर वगैरह जिसको हम बोलते हैं ऐसा होना शुरू हो गया, ये सब जो चीजें हैं ये इनिशियल स्टेज में सभी के साथ ही, लेकिन कुछ तो इंडिविजुअल होगा ना भाई, कुछ तो ऐसी बात होगी ना कि हम इसको फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को बोलते हैं, राइट साइड, हालांकि ये डॉक्टरों का प्रेरोगेटिव है, डॉक्टर लोग अस्पतालों में जाते हैं और वो फिर चेक करते हैं फिर वो बोलते हैं, लेकिन ये निशानियां वो हैं जो मैंने आप सब लोगों को बताई कि भाई इन जनरल पैदा होंगी, इन जनरल पैदा होंगी जब आपको हार्ट में कोई प्रॉब्लम या छाती में कोई प्रॉब्लम आएगी। पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि नहीं, ये हार्ट की है, ये छाती की है। फिर हार्ट की बात करेंगे तो हार्ट के हमने तीन डिवीजन, बल्कि चार ही डिवीजन मैंने कर दी, और चार डिवीजन में मैंने क्या कहा, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, कंजेनिटल हार्ट फेलियर जो बच्चों को होता है आमतौर पे बचपन से लेकर ही होता है, और वो फोरामेन ओवल की बात होती है वो हम इसको बताएंगे, और उसके बाद कई बार ऐसा होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, सारा खून वहां इकट्ठा हो रहा है लेकिन जाने वाला रास्ता रुक गया है, जाने वाले रास्ते में कोई रुकावट आ गई है और पूरा प्रेशर नहीं बन रहा, बस जिधर भी ट्रैफिक रुक गई, जिस तरफ जाने वाली ट्रैफिक में कोई रुकावट आ गई उसको हमने ट्रेस करना है, कहां हो गया, किसी ने कोई बांध तो नहीं दिया, आर्टरी जो है वो तो डीप है, अब इसके छेती बटी जल्दी से कोई ऊपर से प्रेशर जो आप डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बंद हो जाए, क्योंकि वो डीप बनाई कुदरत ने कि इसका प्रवाह जो है रेगुलर चलता रहना चाहिए, और ऊपर से बांधेंगे तो बंद होगी ज्यादातर वेन जो खून वापस लेकर जा रही, जो खून लेकर आ रही है वो सभी नाड़ियां डीप होती हैं और ऊपर से बांधने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलती रहती हैं। और इस सब चीजों का जो हवाला है वो हम अगले प्रोग्राम में आपके साथ साझा करेंगे। आज का प्रोग्राम हमारा खत्म हो रहा है और मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 9701 सेरा एन कोर्ट डबलिन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त तक कोई बीमारी के सामने आप परेशान हैं और लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कुछ असर नहीं हो रहा आपको लगता, तो अब सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और अगर होम्योपैथिक की साइंटिफिक अप्रोच है शरीर की, ये नहीं है कि आपको कब्ज है ये लो दवाई, आमतौर पर ट्रेंड क्या चल रहा है यही है ना कि सिर दर्द है आ लो दवाई, कब्ज है या ये लो दवाई, अलग अलग आप नाम लेंगे और डॉक्टर कह गए अच्छा जी ये लो दवाई। होम्योपैथिक सिद्धांत है इस शरीर को एक सिंगल यूनिट मानता है, इसके अंदर जो जीवन शक्ति है वो सिंगल है इसको कंट्रोल करने वाली, वो जो निकल जाती है तो आंख नाक मुंह ये सब वही रहते हैं लेकिन ये काम नहीं करते। इसका मतलब इसकी कंट्रोलिंग पावर जो है हमको तो उसको डील करना है यार, अगर सही चल रहा है तो भी उसकी वजह से चल रहा है, अगर गलत चल रहा है, अगर चीफ मिनिस्टर ही ठीक नहीं है तो बाकी नीचे का प्रोग्राम तो कैसे सही नहीं चलेगा, और अगर वहां कोई नुक्स हो गया है कमांड नहीं चल रही है तो फिर हम सीएम को ही बोलेंगे तो हम सीएम के सामने ही बात रखेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग इस शरीर को सिर से लेकर पांव तक क्या क्या नुक्स हो गया, कहां कहां नुक्स हो गया, इस चीज की शिनाख्त करने के बाद ही आमतौर पर ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं कि एज ए होल निशानी क्या हुई, एज ए होल नुक्स कहां हुआ और उसका निवारण कैसे हो सकता है, ये सब है। तो आना और जाना है और आने और जाने किसी की फंक्शन में, किसी की इलेक्ट्रिसिटी में, किसी के करंट में, चलने के प्रवाह में कोई रुकावट आएगी तभी तो बीमारी आएगी ना किसी अंग में, तो यही सब हमें शनाख्त करना होगा। बड़ा आसान तरीका, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाला नहीं है, पर हाँ अगर आपको लगता है कि आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में हैं जिसका हल आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप ये समझने के लिए भी मुझे कॉल कर सकते हैं 4086871899। और अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम से कुछ जानकारी मिल रही है, कुछ अच्छा मिल रहा है, तो ये बात आप दूसरे अपने रिश्तेदार बहन भाइयों को बताएं ताकि वो लोग भी इन चीजों को जान पाएं और अपनी सेहत का ख्याल रख पाएं, अपने आप को तंदुरुस्त रख पाएं, और अगर बीमार भी पड़े तो एंशियस ना हो, परेशान ना हो, उनको पता हो कि भाई इसके पीछे ये कारण है, इसको हम पहले ठीक कर सकते। तो आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूं। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच
2: जी, थैंक यू
1: थैंक यू थैंक यू थैंक
0: यू। चीमा साहब आ गए ने
1: जी, चीमा साहब नाल ही से, बड़ी मेहरबानी जी, मिलते हैं जी परसों नु फिर सुनते हो, ताडा भी धन्यवाद, इसी तरह सुन लिया करो प्रोग्राम नु, बड़ी मेहरबानी।
0: हां हार्ट हार्ट दी गल चलनी है, ध्यान नाल सुन लियो फिर
1: जी सर, थैंक यू जी, थैंक यू।
3: मठा जेहा चलदा व्यापार, परेशान ना हो मेरे यार, कारोबार फड़ेगा फिर रफ्तार, प्रवाज रेडियो ते घर प्रचार। जी हाँ, अपने कारोबार नूं दुनिया भर च प्रचारण लई प्रवाज रेडियो ते इश्तिहार दिओ। वधेरे जानकारी लई संपर्क करो फोन नंबर 9917573190।

फिर भी हमने किया तंग गम ने, मगर फिर भी हमने कसम ये ना तोड़ी, शराफत ना छोड़ी नजर।

आवाज़ दी दुनिया दे मेहरबान दोस्तो ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट दे खूबसूरत श्रोते ए मोहब्बत दा पैगाम देण वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबूआं खिलारदा आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वाधा करदा खूबसूरत लबां ते हासे खिलारदा।

वार यू आर, वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज, मैडम नसीबोलाल जी।

वार यू आर। वंडरफुल सॉन्ग, क्या बातें ने, किड्डी सोहनी आवाज, किन्नी प्यारी आवाज मैडम नसीबो लाल जी, लाल जी दी। गल इस तरह के जो मैं फील करदा वो ये कि लता जी हुनी, मलका इतरंदम नूरजहां जी, आशा उषा ते जिन्ने भी मतलब की है टॉप दियां सिंगर होईयां ने, नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी सिंगर सिंगर है, पर गलत हत्थां दे विच आ जान करके ते अनपढ़ होण करके बेचारी थोड़ी जेड़े हुंदे ने ना बैकवर्ड लोग जेड़े पढ़े पुढ़िया इलाका नहीं हुंदा, पर एदे आर्ट विच एदी आवाज जेड़ी है ओ टक्कर वड्डियां वड्डियां ओलंपिक दियां जेड़ियां प्लेयर रहियां ने साडे, जिन्हां दे मैं नां लए ने, जिन्हां ने दिल ते राज कीता है, बिल्कुल नसीबो लाल उन्हां दे टक्कर दी आर्टिस्ट है। सो सजनों, मैं ना तुहानू अपनी एक रचना सुनाउणा, उहदे बाद मैं तुहाडे वल आ रहा, ते तुसी रेडी हो जाओ ते मैं टर्न बाय तुहाडे वल आवांगा सारिआं वल ही, क्योंकि अज प्रोग्राम ही तुहाडा। अर्ज इस तरह सजनों के गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है गुस्सा माड़े ते ही क्यों आउंदा है ते गरीब क्यों अकल तो दूर हुंदा, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, अकल क्यों थां थां झुकदी है, हर मूर्ख नूं क्यों गरूर हुंदा, ते तरक्की क्यों पैर हैवाना दे चुमदी है, शरीफ क्यों इज्जत तो दूर हुंदा, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, एक गलती क्यों औरत लई मौत हुंदी, ओए बंदा क्यों गुनाह तो दूर हुंदा है, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, सौरा भी ते उस्से घर च ही हुंदा, बहुत घट वेख्या होगा सौरा नू ना लड़दा होवे, नहीं, औरत औरत दी क्यों शरीक हुंदी, झगड़ा नू सस दा क्यों मशहूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, वड्डा रुतबा क्यों मुंडे वाले रखदे ने, ते बाप धी दा क्यों मजबूर हुंदा, ओ क्यों रहिंदी है औरत मजलूम बन के, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, मनुख नू बंदा होण दा क्यों गरूर हुंदा, ते नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, पुरोहित क्यों प्रभु तो दूर हुंदा, आ नीवी जात क्यों मंदिर नहीं वड़ सकदी, ते पुरोहित क्यों परमात्मा तो दूर हुंदा, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, हर मुल्क क्यों दूजे दा है वैरी, एटम बंब लई क्यों मजबूर हुंदा, जिउंदिआं दा क्यों नहीं माण करदे, वो लोकी जिउंदिआं दा क्यों नहीं माण करदे, बंदा मर के क्यों मशहूर हुंदा, बंदा मर

आज भी दुनिया के मेहरबान दोस्तों ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोतों ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दियां खुशबुआं खिलारदा वाह वाह आप सब दी जिंदगी दे खेड़ियां च वादा करदा

वाह जी वाह, वाह बहुत खूबसूरत गाना, वंडरफुल आवाज। सो ए सन जी आसा सिंह मस्ताना जी हुई। ते दोस्तों मैं हुण तुहानू एक अपनी रचना सुनावांगा, ते हुण तुसी मिस कॉल मार सकते हो, रचना तो बाद मैं